सब गुल हैं, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। डू आवर एक्शंस गिव ऑफ एनी फ्रेग्रेंस और डज इट डिस्टेंस पीपल फ्रॉम अस? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक वाज सच दैट देयर वाज फ्रेग्रेंस। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हु अजमईन, इन एवरी एक्शन ऑफ देयर देयर वाज अ फ्रेग्रेंस ऑफ ईमान एंड इस्लाम। वेयर इज दैट फ्रेग्रेंस इन आवर लाइव्स? We can have knowledge, we can have everything. We know, it's not that we don't know. मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। Ya Allah, create in my heart also some kind of concern that there is a day of judgment on which I will have to stand before you and account for my deeds and actions. I can get away and I can conceal my sins and faults from my neighbors, my parents, my family. But can I conceal it from the one who has blessed everyone else with sight? The one who blessed billions of people with sight. And yet we consider him to be the only one who is blind. When we are committing sins in darkness, we say, no one was watching, no one was watching. जो करता है तो छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। माय अल्लाह, आई रिमेन यूजलेस ऑल माय लाइफ, मेक मी अ यूजफुल पर्सन नाउ। वी हैव बीन सेंट टू बी ऑफ यूज टू मैनकाइंड, ऑफ हेल्प टू मैनकाइंड, of hidayat for mankind.

है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, इन योर गार्डन एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट रोज, द ओनली वन दैट इज अ थॉर्न इन द गार्डन इज माई सेल्फ।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं। हा माय अल्लाह, माय लाइफ विच इज गॉड इज गॉड, द लाइफ विच रिमेन्स आई लिव इन योर मोहब्बत इन योर लव, जस्ट एज आई स्पेंट माय लाइफ इन द मोहब्बत एंड द लव ऑफ शैतान एंड नफ्स, या अल्लाह नाउ लेट मी लिव इन योर लव इन योर मोहब्बत।

बेनिशां हो गए हर निशां, कब्र में खाक जानी मगर क्या मिली। वेयर आर ऑल दोज ब्यूटिफुल फेसेस गॉन? वेयर इज दैट ब्यूटिफुल लॉक ऑफ हेयर गॉन? वेयर आर दोज ब्यूटिफुल आईज गॉन? पीपल यूज टू बिकम क्रेजी, दे यूज टू फॉरगेट अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। They used to become the bandas of nafs and shaitan when they saw beautiful and pretty faces. Where are they now all gone? After death, go and turn the soil upside down and search for those beautiful eyes and lock of hair. Search for those beautiful, pretty faces. Go to the gardens and see how beautiful flowers there are in spring. Red, blue, yellow, white, purple, velvet, all kinds of colors, beautiful colors, but after some time withers and falls.

खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। वल्लाह आई लिसन टू योर नेम विद एवरी बीट ऑफ माई हार्ट, एवरी बीट ऑफ माई हार्ट बी अल्लाह अल्लाह। इन अदर वर्ड्स एवरी एक्शन ऑफ माइंड आई हैव अल्लाह बिफोर मी। इज ही प्लीज्ड विद इट और डिसप्लीज्ड? इफ इज हैप्पी आई डू इट, इफ इज डिसप्लीज्ड आई लीव इट अप। And some really hear Allah, Allah with every beat of their hearts. Allah Ta'ala must give us such iman, such yaqeen and such muhabbat that our heart throbs with Allah Ta'ala's love.

गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं, तेरे गुलिस्तान में सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिआर में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

आहत कम असम नहीं है. The gist of which is, no matter what kind of bungalow I stay in, no matter what kind of mansion or palace or home I stay in, and even if Allah tabaraka wa ta'ala out of His fazal and ihsan, He gives me everything of this world, everything of both worlds, and I enjoy all the ni'mats, all the bounties, good home, good children, good wife, plenty of things to eat, good health, everything. मेरे दिल में तेरा अगर गम नहीं है तो ये सारी राहत कम असम नहीं है. इफ आई डोंट हैव दैट लव इन माई हार्ट ओ अल्लाह फॉर यू, इफ योर मोहब्बत डज नॉट कम इन टू माई हार्ट, देन ऑल दीज थिंग्स आर नो लेस देन पॉइजन टू मी. देन इट इज नथिंग बट पॉइजन, इट इज टॉक्सिक. विद ऑल दीज थिंग्स इफ आई हैव योर लव एंड ओबीडियंस, देन अल्हम्दुलिल्लाह. But if there's no love, there's no obedience, then it is nothing but poison. That means they enjoy the ni'mats if it is in accordance with Allah Ta'ala's hukam. They don't disobey Allah Tabaraka wa Ta'ala in those ni'mats.

है, मेरी जान का कोई सहारा नहीं है, बजुज तेरे कोई हमारा नहीं है। If Allah Ta'ala wills, in the next zikr of majlis, inshallah, I'll give an explanation of what I just read now. Let's make a little bit of zikrullah now and make dua. Leave that light on at the back there. Tell Musa to leave that light on. Come, it would dark out. Allah Allah kaisa pyara naam hai, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है। आश